0: है।
1: जाची
0: जाची बोलते नहीं, बोलते है आज।
2: चल लोकी, अरे ठेका दुष्टुमी करो ना।

0: Dupin. हेलो आशीष,
1: हजूर घोड़े का तबीयत खराब नहीं, बहुत रोज से आपका सवारी नहीं मिला, ये दिल खराब।
0: दाना ठीक पाचे तो?
1: जी हाँ हजूर।